दिल ने पुकारा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अफसाना नहीं, ये तो हकीकत है कि हम और आप एक ही नैया के मुसाफिर है, और इस सफर में सिर्फ सुर है, ताल है, लय है। इन पुराने सुहाने भूले बिसरे गीतों का नजराना लेकर मैं आई हूँ आपके लिए। आज के इस प्रोग्राम में हम सुनेंगे हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार इंदिवर ने लिखे हुए कुछ बेजोड़ नगमे।

दोस्त दिल ने पुकारा में अभी आपने सुना फिल्म एक बार मुस्कुरा दो का गीत। संगीतकार थे ओपी नैयर। ये बेजोड़ नगमा लिखा था इंदिवर ने, जो भारत के प्रसिद्ध गीतकारों में से गिने जाते हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के झांसी जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित बरुआ सागर कस्बे में हुआ और एक निर्धन परिवार में हुआ। इनका मूल नाम श्यामलाल बाबू राय था। उनके बचपन में एक फक्कड़ बाबा से उनकी मुलाकात हुई, जो अच्छे गाते थे। इनके संपर्क में श्यामलाल माने इंदिवर जी को गीत लिखने में रुचि जागृत हुई।

दिल्ली पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म अनोखी रात से। गाया था लता मंगेशकर ने, संगीत से सजाया था रोशन ने, लिखा था गीतकार इंदिवर ने, जिनके बारे में बातें करेंगे आज के दिल्ली पुकारा में। मैं हूँ प्रांजलि आपके साथ। इंदिवर के बाल सखा राम सेवक रिचारिया ने उन्हें राष्ट्रीय विचारधारा और सुधार की दृष्टि से साहित्य की ओर मोड़ा। वे उनकी रचनाओं को सुधारते रहे। एक बार कालपी के विद्यार्थी सम्मेलन में श्यामलाल ने मंच पर कविता पाठ किया तो श्रोताओं द्वारा उन्हें काफी सराहा गया और बड़े कवियों की भांति विदाई के समय उन्हें 51 रुपए की भेंट प्राप्त हुई। तब उन्होंने 36 रुपयों में साइकिल खरीदी, सम्मेलनों में जाने योग्य अचकन और पजामा खरीदा। फिर भी जेब में कुछ रुपए बच गए थे क्योंकि उन दिनों 1 रुपयों की कीमत भी बहुत थी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए उन्होंने श्यामलाल बाबू आजाद इस नाम से कई देशभक्ति पर गीत भी लिखे।

किशोर कुमार ने गाया हुआ ये बड़ा ही प्यारा सा गीत आपने सुना फिल्म धर्मात्मा से। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और गीतकार थे इंदिवरन। दोस्तों ये जादूगरी गीत आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास पर, आपने ट्यून किया है 90.8। मैं हूँ प्रांजलि आपके साथ। इंदिवर के गीत बड़े ही पसंद किए गए, धर्मात्मा, अनोखी रात, सरस्वती चंद्र, पारस मणि, पूर्व और पश्चिम, सच्चा झूठा, सफर अमानुष, इन सारी फिल्मों के सारे ही गीत हम और आप जैसे संगीत प्रेमियों के दिल में बस गए हैं। और भी एक फिल्म है जिसका नाम है दिल ने पुकारा, जो हमारे प्रोग्राम का भी नाम है।

सरस्वती चंद्र फिल्म से गीत आपने सुना, लिखा था इंदिवर ने, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और गाया था लता मंगेशकर ने। दोस्तों आज भी बड़ी शिद्दत और एहसास के साथ उनके गीत सुने जाते हैं, गाए जाते हैं, जैसे वह पहले गाए और सुने जाते थे। इंदिवर ने चारों दशकों में लगभग 1000 गीत लिखे, जिनमें से कई यादगार फिल्मों की सुपर डुपर सफलता के कारण भी बने। जिंदगी के अनजाने सफर से बेहद प्यार करने वाले हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर शायर और गीतकार इंदिवर का जीवन के प्रति नजरिया उनकी लिखी हुई इन पंक्तियों में समाया हुआ है।

दोस्तों, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, जैसे सैड सॉन्ग लिखने वाले ये गीतकार थे। हंसाने के लिए, गम मिटाने के लिए इन गीतकार संगीतकारों का हमारे जीवन में जो योगदान है, उसे तो हम और आप कभी भी भुला ना पाएंगे। म्यूजिक इज अ पेन किलर, गमों की दवा है, दर्द पर मरहम है ये मौसिकी। तो चलिए सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे ये प्यारे से गीत, और फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल ने पुकारा। तब तक नमस्कार।

बात पे तुम रूठा ना करो, दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा ना करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक, फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्ला

एक दिन तुम्हारे दिल में भी एक आग उठेगी, तूफान उठेगा, मोहब्बत जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम, सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं, फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला।

ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़ निज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना।

भगवान से बहुत उसकी आभारी हूँ कि ये जो मेरा सक्सेस है इसका मेरे ऊपर कोई बुरा असर नहीं हुआ। हो सकता था ना कि मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता, मैं अपने आप को बहुत समझती, पर मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती। मैं ऐसा समझती हूँ कि जो भी हुआ उसने चाहा हुआ, जो कुछ भी हमें मिला है वो उसकी कृपा है बस। मैं हमेशा उसके शरण जाती हूँ, सुबह भी मैं प्रार्थना करती हूँ, रात को भी सोने से पहले प्रार्थना करके सोती हूँ।

दिल्ली पुकारा सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अफसाना नहीं, ये तो हकीकत है कि हम और आप एक ही नैया के मुसाफिर है, और इस सफर में सिर्फ सुर है, ताल है, लय है। इन पुराने सुहाने भूले बिसरे गीतों का नजराना

दोस्त दिल ने पुकारा में अभी आपने सुना फिल्म एक बार मुस्कुरा दो का गीत। संगीतकार थे ओपी नैयर। ये बेजोड़ नगमा लिखा था इंदिवर ने, जो भारत के प्रसिद्ध गीतकारों में से गिने जाते हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के झांसी जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित बरुआ सागर कस्बे में हुआ और एक निर्धन परिवार में हुआ। इनका मूल नाम श्यामलाल बाबू राय था। उनके बचपन में एक फक्कड़ बाबा से उनकी मुलाकात हुई, जो अच्छे गाते थे। इनके संपर्क में श्यामलाल माने इंदिवर जी को गीत लिखने में रुचि जागृत हुई।

दिल पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म अनोखी रात से। गाया था लता मंगेशकर ने, संगीत से सजाया था रोशन ने, लिखा था गीतकार इंदिवर ने, जिनके बारे में बातें करेंगे आज के दिल ने पुकारा में। मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। इंदिवर के बाल सखा राम सेवक रिचारिया ने उन्हें राष्ट्रीय विचारधारा और सुधार की दृष्टि से साहित्य की ओर मोड़ा। वे उनकी रचनाओं को सुधारते रहे। एक बार कालपी के विद्यार्थी सम्मेलन में श्यामलाल ने मंच पर कविता पाठ किया तो श्रोताओं द्वारा उन्हें काफी सराहा गया और बड़े कवियों की भांति विदाई के समय उन्हें 51 रुपए की भेंट प्राप्त हुई। तब उन्होंने 36 रुपयों में साइकिल खरीदी, सम्मेलनों में जाने योग्य अचकन और पजामा खरीदा। फिर भी जेब में कुछ रुपए बच गए थे क्योंकि उन दिनों 1 रुपयों की कीमत भी बहुत थी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए उन्होंने श्यामलाल बाबू आजाद इस नाम से कई देशभक्ति पर गीत भी लिखे।

किशोर कुमार ने गाया हुआ ये बड़ा ही प्यारा सा गीत आपने सुना फिल्म धर्मात्मा से। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और गीतकार थे इंदिवरन। दोस्तों ये जादूगर गीत आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास पर, आपने ट्यून किया है 90.8। मैं हूँ प्रांजलि आपके साथ। इंदिवर के गीत बड़े ही पसंद किए गए, धर्मात्मा, अनोखी रात, सरस्वती चंद्र, पारसमणि, पूर्व और पश्चिम, सच्चा झूठा, सफर अमानुष, इन सारी फिल्मों के सारे ही गीत हम और आप जैसे संगीत प्रेमियों के दिल में बस गए हैं। और भी एक फिल्म है जिसका नाम है दिल ने पुकारा, जो हमारे प्रोग्राम का भी नाम है।

सरस्वती चंद्र फिल्म से गीत आपने सुना, लिखा था इंदिवर ने, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और गाया था लता मंगेशकर ने। दोस्तों आज भी बड़ी शिद्दत और एहसास के साथ उनके गीत सुने जाते हैं, गाए जाते हैं, जैसे वह पहले गाए और सुने जाते थे। इंदिवर ने चारों दशकों में लगभग 1000 गीत लिखे, जिनमें से कई यादगार फिल्मों की सुपर डुपर सफलता के कारण भी बने। जिंदगी के अनजाने सफर से बेहद प्यार करने वाले हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर शायर और गीतकार इंदिवर का जीवन के प्रति नजरिया उनकी लिखी हुई इन पंक्तियों में समाया हुआ है।

दोस्तों, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, जैसे सैड सॉन्ग लिखने वाले ये गीतकार थे। हंसाने के लिए, गम मिटाने के लिए इन गीतकार संगीतकारों का हमारे जीवन में जो योगदान है, उसे तो हम और आप कभी भी भुला ना पाएंगे। म्यूजिक इज अ पेन किलर, गमों की दवा है, दर्द पर मरहम है ये मौसिकी। तो चलिए सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे ये प्यारे से गीत, और फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल ने पुकारा। तब तक नमस्कार।

लूटा न करो, दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा न करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक, फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्लाया करोगी।

एक दिन तुम्हारे दिल में भी एक आग उठेगी, तूफान उठेगा, मोहब्बत जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम, सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं, फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला।

ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी।